0: रेडियो सारंग 107.8 FM जय हे
1: तुलुवलानी रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगदा बदक इत्ते तुलु प्रसार